0: 1983 की फिल्म बेताब का ये गाना लता जी और शब्बीर कुमार की आवाज में। जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे, इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज थर्सडे की सुबह 18 जून की सुबह शबनम साही के साथ। दिशा इन वॉरिंगटन सेज, शबनम जी यू आर सो फनी, आई लाइक अ स्लाइस ऑफ दैट केक प्लीज। रियली दिशा, हाउ हंग्री आर यू? शुड आई कार्व यू अ थिन स्लाइस और अ फैट स्लाइस? डू यू वांट टू मेक दिस योर लंच और इज इट जस्ट अ स्नैक? लेट मी नो। Manoj in Crowley says, good morning Shabnam ji, it's our 20th wedding anniversary today. Please can you wish my dearest wife Hetal, words fall short to describe what she means to me and my girls Anya and Ishwa. I'm the luckiest man in the world to have her as my loving wife. Thanks to Sunrise, we have the weekend long celebrations attending Crazy for Kishore, that concert amongst our plans. Can you please dedicate the next song to Hetal? To Hetal and Manoj in Crowley, have a fabulous 20th anniversary celebration. Agla gana aap dono ke naam.
1: Listener's choice brought to you by Colors TV.
0: Seher Beg dares to dream beyond limits, but destiny ties her to Mahid Niazi, a man she never chose. In a world of rules, control and judgment, will her dream survive? Watch Seher Hone Ko Hai Monday to Friday 9:25 PM only on Colors TV. The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southall Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southalltravel.co.uk. Taken from the film Chand Mera Dil. Makhmali awaz jaise goonj ho rabab ki. Haan yahi to khasiyat hai aapki. Good morning.

अब रही ना मेरी आंखों को जरूरत ख्वाब की, यू बेटर देन एनी ड्रीम, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। हाँ यही तो खासियत है आपकी।

0: But lucky hair kahan is song number two. Which one do you want to hear? 07925-700-272 is the WhatsApp number.
1: Kavita on Sunrise with India's best dancer on Sony TV. Backed by popular demand, the stage is set. The dancers are ready. Are you? Join Karishma Kapoor in India's best dancer. This weekend, 9:30 p.m. only on Sony TV.
2: Planning the holiday of a lifetime or visiting loved ones? Call Southall Travel 24/7. Fast, reliable and with a price match guarantee. Book now on 0208-574-8410. Southall Travel. Any airline, anywhere, anytime. At all protected. Listen up, London, there's something massive on the way. Haldiram's is finally coming to Leicester Square in central London on the 25th of June. You know what that means? The delicious taste of home, all your favorite dishes from India, including Raj Kachori, Chole Bhature, Pav Bhaji, Paratha, sweets and more, available in the heart of your city to make every meal a special celebration. Haldiram's at Leicester Square, central London, opens its door on the 25th of June. इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply. आज भी जलसा, कल भी जलसा, हर मौके पे जलसा ही जलसा. घुघरा, मठिया, खाजली और जलेबी गाठिया का तो जवाब ही नहीं. मिठाई और फरसान के बाद शॉर्ट जलसा स्वीट्स एंड सेवरीज. 28 वॉटफर्ड रोड, वेम्बली. ओपन ट्यूसडे टू संडे.
3: हर केस में कम से कम एक विटनेस तो होता ही है. मर्डरर खुद. DC DD रीटा ब्राउन, कोलकाता पुलिस.

0: Please, for a bit of fun, if you think you can identify all three, you can WhatsApp me on 07925 700 272. Get involved. If you get all three correct, I will add your name to the shout-outs list.
1: तुमसे बात करना बहुत जरूरी है. यहाँ अगर तकलीफ हो, तो कहीं और जा सकते हैं. बात बहुत सीरियस है. मैं सनी को नहीं छोड़ सकती. उसके सिवा मेरा और कोई है भी तो नहीं ना दृष्टि.
2: क्या बात है? इतने रेस्टलेस क्यों हो?
3: इंडिया जाके सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं.
2: क्यों?
3: US कॉन्सुलेट जाना है वीजा के लिए.
2: वीजा?
3: व्हाटन यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली है.
2: रिफ्यूज करो.
3: क्या?
2: धीरूभाई अंबानी गए थे अमेरिका.
0: Wow, there you go. That shuts down that one, doesn't it? Right, what are you thinking? Do you know who they are? Shall we have another listen?
1: तुमसे बात करना बहुत जरूरी है. यहाँ अगर तकलीफ हो, तो कहीं और जा सकते हैं. बात बहुत सीरियस है. मैं सनी को नहीं छोड़ सकती. उसके सिवा मेरा और कोई है भी तो नहीं ना दृष्टि.
2: क्या बात है? इतने रेस्टलेस क्यों हो?
3: इंडिया जाके सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं.
2: क्यों?
3: US कॉन्सुलेट जाना है वीजा के लिए.
2: वीजा?
3: व्हाटन यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली है.
2: रिफ्यूज करो.
3: क्या?
2: धीरूभाई अंबानी गए थे अमेरिका.
4: नेक्स्ट.
0: Yeah, I haven't got anybody with all three names correct yet. But in the meantime, let's choose your... I don't know what's going on here. This one clearly didn't prep properly. Garam masala churi churi is your option A. You know the one, don't you? You know the one, yeah, that one. Hairapa, hairapa. If you'd fancy listening to this one, just WhatsApp me A. And for B... Hello. It's got a mind of its own today. Guru and Tere Bina is your option B. The song with the most votes will play for you very shortly. Let me know. And keep your answers coming in.